0: Plus अब है Star Plus।
1: बजट टाइट पर ब्रांड का इंपैक्ट बड़ा चाहिए। Leica रेडियो और Leica गोल्ड लाए हैं आपके लिए परफेक्ट पैकेज। रेडियो डिजिटल या इवेंट सब कुछ मिलेगा कस्टमाइज्ड। जल्दी करिए कॉल नाउ 0207-132-1458 या लिखिए sales@leicaradio.com।
2: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

0: Breaker Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester, and the Midlands with the UK's biggest Asian hits.
1: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
2: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
1: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
2: गारंटेड।
1: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल,
2: फोन 02085748410।
1: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
4: Relax, I've booked the Uber already.
3: But how? My roaming isn't even working yet.
4: I switched to Simsy before we left London.
3: Simsy? Since when are you the tech expert?
4: Since I decided I want a stress-free holiday.
5: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simsy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simsy, holiday travel simplified.
6: T's and C's apply.
0: Sounding good throughout the night with the biggest soothers. It's your Leica Radio.

Biker Radio. काम कर गई दोनों ही मेरी बख्शिश के लिए, मोमिन की दुआ, सूफी की सदा।

मने सगल पवन की सुध मने मोह चोटा ना खाए मने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मने मार्ग ठाक ना पाए मने पत्स्यों प्रगट जाए मने मग ना चले पंथ मने धर्म से ती सनबंध।

असंक अमर कर जाए जोर, असंक गलवड हत्या कमाए, असंक पापी पाप कर जाए, असंक कूड़े आर कूड़े फिराए, असंक मलेच्छ मल भक खाए, असंक निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। असंक नाव असंक थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

करते तेरे भगत रसाले। होर केते गावन से मैं चितनावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब, साचा साची नाई। है भी होसी जाए ना जासी, रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई। कर कर वेखे की ता अपना, जिव तिस दी वड्याई।

जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोहन पंच परवार।

जाएगा। ए भाई मैं पिंकी में हूँ कि वो एक्चुअली आ रही सपना इधर देखो। हाँ सपना इधर अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है।

0: सेट गो माइक्रोवेव फूड कंटेनर
1: हर मौके पर काम ये आए घर घर खुशियां लाए
0: जहां जिंदगी वहां सेट गो

0: Biryani. 29th, 30th and 31st August. Special offers available on Disha products. Disha, Disha, taste the difference.
1: लाइका रेडियो के सभी लिसनर्स को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं. प्यार और अपनापन यूं ही बना रहे. बेस्ट विशेस फ्रॉम जैमिन फूड्स.
2: लाइका रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासन. वेक अप फील गुड. इट्स डॉनी ब्रास्को ऑन ब्रेकफास्ट.
3: लाइका रेडियो
2: फील गुड ट्रैक. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: की नजर,
1: जहाँ जिंदगी वहाँ सार्थक।
2: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस। एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स। 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96। परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन। हरी, ऑफर्स एंडिंग सून। टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड।
3: The wait is finally over.
4: Ab sahi sur laga rahe Mumtaz.
3: Mirzapur is coming to the big screen.
5: Gaddi na to virasat se milti, na siyasat se.
3: Power, revenge aur Mirzapur ki gaddi ke liye phir machega bawa.
6: Abhe Kaleen bhaiya hai wo, king of Mirzapur.
3: Pankaj Tripathi as Kaleen bhaiya, Ali Fazal as Guddu Pandit aur Mirzapur ke iconic characters. Ab cinema mein aur bhi bigger. Mirzapur the movie, releasing in cinemas 4th September.
5: Mirzapur mein ek hi darwaza hai Yadav ji. दूसरा कोई नहीं खुलेगा।
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान, देखिए दुबई की शान। फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410। दैट्स 8574-8410।
8: साउथ हॉल ट्रेवल, at all protected. Cry-

0: and 31st August. Special offers available on Disha products. Disha, Disha, taste the difference.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
4: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive TV partner, Star Plus, an exclusive radio partner, Leica Radio Network.
5: The Breakfast Blend. Perfectly brewed by you. Donny Brasco on Leica Radio.
6: The Diamond Track of the Hour is brought to you by Malabar Gold and Diamonds.

बाजी इश्क की बाजी है, तो जो चाहे लगा डर कैसे, अगर जीत गए तो क्या कहना।

0: on the Mid Morning Show. Like a radio. आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस, उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत.
1: Get back to school lunches packed with value at Aldi. You can fill 5 lunch boxes for under £4.50, including white rolls, British cooked ham, cheese triangles, mini bananas, little delights fromage frais, and chopped iceberg lettuce. That's top marks for value. Aldi, which best value brand of the year 2026?
2: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
3: Imagine turning your next cake box order into a magical family adventure. This August, every online cake box order is automatically entered into our prize draw to win a family trip for 4 people to Disneyland Paris. So celebrate birthdays, special moments and summer memories with Cake Box. And you could be celebrating in Disneyland too. Order online this August at cakebox.com. Cake Box, celebrate today and make memories forever. TNCs apply.
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
5: Get ready, UK. Snell Grover is coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi, and more surprises on the night.
6: Expect music, madness, family entertainment, and non-stop laughter. Snell Grover Live UK Tour 2026, happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
5: 31st October, Mattioli Arena, Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
6: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite, and AXS.
5: For more information, contact 07585 801801. Official radio partner, Leica Radio Network.
7: Now make your money grow with ICICI Bank UK. Earn up to 4.80% on non-withdrawable fixed deposits.
8: Choose 1 to 3 year tenures and tap to open instantly in-app. Quick, simple and secure. Plus, explore savings accounts, bonds and more. All at your fingertips. Start saving today with ICICI Bank UK. ICICI Bank UK PLC is authorized by PRA and regulated by the FCA and PRA. TNCs apply.
9: South Hall, देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है.
10: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
11: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स. आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल, UB2 4DB. कॉल 07795181001.
12: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
13: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
12: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
13: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
12: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
13: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
2: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
14: अलनूर पुराना बाएतमाद नाम, नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस, प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस. एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है. अलनूर, टेस्ट द डिफरेंस.
15: भाई बहनों का प्यार, खुशियां बेशुमार. लाइका रेडियो की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं.

0: आखिरी आवर ऑफ योर मिड मॉर्निंग शो एंड इट्स ऑल अबाउट अंताक्षरी बैक टू बैक लग चुके हैं द थर्ड सॉन्ग वी नीड्स टू स्टार्ट विद द लेटर डी द फर्स्ट वन इज फॉर ऑल द सिस्टर्स आउट देयर ऑल द देसी गर्ल्स
1: लाइका रेडियो लेट्स रिटर्न टू द बिगेस्ट हिट्स Back to back, sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: Humse sasta kahin nahi mil sakta.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica.

0: अल नूर पुराना बा इत्मात नाम नई रेंज के साथ प्रीमियम पल्सेस प्योर फ्रेश फुल ऑफ नेचुरल गुडनेस एवरीडे दाल से लेकर होलसम मील्स तक आपके एशियन ग्रोसरी स्टोर्स पर अवेलेबल है अल नूर टेस्ट द डिफरेंस
1: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी अ पार्ट ऑफ इट क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ द न्यू प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन विद इट्स एंबिशियस 11-11 इनिशिएटिव एमिंग टू कंप्लीट 11 लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports. There's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574-8410 दैट्स 0208574-8410
3: साउथ हॉल ट्रेवल Auto protected.
4: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill. A desi tadka is total riz, है ना?
5: Well, she's talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
4: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
6: Hi, this is Chitrani Vilsay. For 2 days, Dubai's leading developers will be in London themselves presenting their latest projects. I look forward to seeing you at the NKM Media Dubai Property Expo on the 5th and 6th September at the London Hilton on Park Lane.
7: Calling all samosa lovers! Laika Radio and Ashoka Samosa celebrating World Samosa Day in style. Listen from Monday and all week for your chance to win a £50 Amazon gift voucher. Keep listening. Get ready to enter and celebrate World Samosa Day with Ashoka Samosa and Laika Radio.
8: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Veg Biryani. 29th, 30th and 31st August. Special offers available on Disha products. Disha, Disha, taste the difference.
1: Honslow, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास।
2: बीकानेर वाला
3: परंपरा भी।
4: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ। आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हॉन्स्लो, TW3-1QT। कॉल करें 07487-687-885।
5: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
6: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
5: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
6: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
5: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
7: Elevate every meal with Hira. From spice blends to rich Hira sauces and Hira dals. Discover the true taste of South Asia at your local ethnic grocery store. Unbeatable quality, authentic flavor. Hira, king in quality, king in taste.
8: Hi guys, this is Arbaaz Khan.
9: This is Alka Yagnik.
10: Hey everyone, this is Arman Malik here.
11: Hi guys, this is Taha Shabadusha.
12: Hello, namaskar, adab. I'm Shah Rukh Khan.
13: Hi, this is Akshay Kumar and you are listening to Laika Radio.
14: A Laika Radio classic plays now.

0: This lovely track in the vocals of Diljit Dosanjh, one of my favorite singers. What a singer he is, a brilliant performer.
1: This is Leica Radio across Greater London. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 128.75 Indian rupees. Remember to make your transfers via branch online or by using the Yono SBI UK mobile app.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Leica Radio.
2: आपका अपना उत्सव प्लस अब है स्टार प्लस उत्सव गोल्ड है स्टार गोल्ड और उत्सव भारत है स्टार भारत
3: वेलकम टू मान्यवर द ब्रांड विद ओवर 600 स्टोर्स वर्ल्ड वाइड वी आर योर वन स्टॉप स्टोर फॉर ऑल सेलिब्रेशन वेयर रिक्वायरमेंट्स लाइक शेरवानीज इंडो वेस्टर्न्स कुर्ताज कुर्ता जैकेट सेट्स लहंगास साड़ीज गाउन्स एक्सेसरीज एंड अ लॉट मोर विजिट मान्यवर साउथ हॉल ऑन 42 द ब्रॉडवे
4: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मे

चुरा के दिल मेरा गोरिया चली इन द वोकल्स ऑफ कुमार सानू एंड अलका याग्निक. व्हाट अ लवली ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बिटवीन अक्षय कुमार एंड शिल्पा शेट्टी. ऑफ कोर्स आई लव द केमिस्ट्री बिटवीन अक्षय कुमार एंड सैफ अली खान एज वेल इन दिस मूवी. दिस मूवी इज मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, अ लवली 90s मूवी. इफ यू हैवंट वॉच्ड इट, आई डेफिनेटली रिकमेंड, देखो जरूर उसको. Long weekend hits on Leica.

0: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months. Dubai is the place. 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 0203 963 5757 and book your meeting. Danube 11, 11. Danube
1: Properties. 11. यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
2: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203 773 633 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज What's your travel mantra?
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीस स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96 परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन हरी ऑफर्स एंडिंग सून टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस मेक एवरीडे ग्रैंड
4: Calling out to all sisters and brothers, Raksha Bandhan is on the 28th of August and FabIndia.uk is giving free Rakhis. FabIndia Rakhis are handmade by Indian artisans. Visit FabIndia.uk and claim your free Rakhi with free postage to your desired address in the UK. Log on to FabIndia.uk now. Offer open till stocks last, T's and C's apply. FabIndia.uk. Crafted in India, now available in the UK.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410 दैट्स 0208574 8410
6: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected.
7: रंजिश सहे दिल ही दुखाने
8: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है
9: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: Listen wherever you are by downloading the Leica Radio mobile app now.
1: Get back to school lunches packed with value at Aldi. You can fill five lunch boxes for under £4.50, including white rolls, British cooked ham, cheese triangles, mini bananas, little delights fromage frais, and chopped iceberg lettuce. That's top marks for value. Aldi, which best value brand of the year 2026?
2: Hi, I'm Nargis Fakhri. We are now bringing the best of Dubai to London again. So if you're serious about investing, this is where you should be.
3: NKN Media Dubai Property Expo, London, September 5th and 6th, 2026. London Hilton on Park Lane.
4: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए दिल की धड़कनें बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
5: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स Your travel mantra.
6: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance with the legendary Anup Chalota. On Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 PM. Show starts 6 PM. Hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners like our radio network.
7: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410
8: साउथ हॉल ट्रेवल At all protected. Cutthroat Ke Khiladi, Saturday and Sunday at 8 p.m. on Colours TV. Powered by Star Tours, associate sponsor Linecroft.

0: Radio.
1: One performer.
2: Countless
0: personalities. A whole universe of entertainment. Sunil Grover, live UK Tour 2026.
1: 29th October, Ovo Arena, Wembley, London. 31st October, Mattioli Arena, Leicester.
0: From Gutti to Dr. Mashur Gulati. From Rinku Bhabi to brand new surprises. Experience Sunil Grover live on stage in the UK.
1: Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
0: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
1: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
3: हर मील को बनाओ थोड़ा और स्पेशल विद टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस. एंड राइट नाउ मेक योर शॉपिंग ग्रैंड विद दीज स्पेशल ऑफर्स एट इंडिपेंडेंट रिटेलर्स. 5 किलोग्राम्स जस्ट 8.96, 10 किलोग्राम्स ओनली 16.96 एंड द बिग 20 किलोग्राम्स पैक जस्ट 29.96. परफेक्ट फॉर एवरीडे मील्स, फैमिली गेट टुगेदर्स और हर स्पेशल सेलिब्रेशन. हरी, ऑफर्स एंडिंग सून. टिल्डा ग्रैंड एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती राइस, मेक एवरीडे ग्रैंड.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
5: साउथ हॉल ट्रेवल. At all protected.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: Fire up the Barbie! With Aldi's barbecue bundle, you can rustle up burgers to feed four. Get British beef quarter pounders, white rolls, baby leaf salad, cheese slices, and tomato ketchup, all for under a super £6. That's flipping amazing value from Aldi. Which cheapest supermarket 2025?
9: I can't wait for our holiday. Sun, sea, no work.
10: Same, but how are we supposed to use our phones abroad? Roaming costs a fortune.
9: Not with SimZy. You get data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
10: And I can keep my number for WhatsApp and bank OTPs. Exactly. Plus, it's flat rate, so no bill shock and you're ready in just 3 minutes.
9: Brilliant. And there's 10% off with Roam Free 10.
10: SimZy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at SimZy.com. Terms apply. Like